आओ उनके संग है ना है हाँ देखा ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी शिंते संग तलाना नायमानी पर तलाना नायमानी शेबोगो नोगे तो हूँ डेप्यूटी एडवाइजर मेडिकल प्लांस आज जगह बहाय ना है खरोक सत लांग जाग ना एसिस्टेंट एडवाइजर भूटानी आर वो खरोक सत लांग जाग ना फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आज जगह वो खरोक सत लांग जाग ना रिसर्च ऑफिसर भूटानी खिलाजा बरोक बहाय ना है के असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर आ जगह खरक्सा नुतलांग जाकनाय अकाउंटेंट खरक्सा खलाई तलांग जाकनाय

अशोक जिरासिंह हाइनी खरंग खना लाइका लता देव बर्मा बाहर चाप जाग चाप आकाश बनी आगरतला बनी लगने पाइख्या तीन ने फुंगी कक ब्रक पांदा हाइनी खरंग जतन तैसा फुंग कहाम तई खुलम बाइका

पर्ने मार्केटिङ नरोक्न सिनी पान्दा नि या फङ्गो न तै कि स्या नरनाङ बेलाइ तङ थक माने ककमा नरनाङ सानाने मुसुङखा आउ अमो हङ्काङ्के बेलाइ खातुङमा बेलाइ तङ थकनि ककमानो हनिमानो हाया दिबा तामनि हङ्काङ्के चिनि आकाशवाणीनि खरक्सा आर्टिस्ट ताम क्रं रसाब क्रं हेदा आओ ताम क्रं रसाब क्रं बताई क्या बोया बोंखा सूर्य कुमार देवबर्मा हंगांके चीनी बिशंगो सिनिया फोन कबंगमा तोंगी मानो फियाबा मन क्लाई शाके सिनी नानी हंगांके सदागर देवबर्मा हंके सेंताइबो जत्तनो कहाम के सिनी बायु हयादना खबुन मारकिसिंग

0: गोजों खे पासानाय आनि मुंनो साल लांगमा गनां रक खापां स्रांमाबाय आनि पहरनो लामसकलायो आं फाइनानोतेयै आनि गरन बाहाय उंनो बुसक से साबलाय बुसक से वानसुकलाय आं संसा ररक किसिरक रानरक आंतेय बुसुं खे नासलेर जागमाबाय आनो टेनटायै कुतुकलाय ररक वाती वावै लामारक लमफ्रुखे साल पासादि हनलायतियो तिनिन साल बाहायनो हनै नखा सागा नासाल नायसालायतियो माशिं मलो सातुं तुंलुलुओ आसुगुई आनु लामसगलायो आं फाइके गसांमाबो खारो सासलां मलो साल तैलेलक साक्लमो नरक बुसुक से खापां स्रांजाक वातै मलो तामुनि आसग वातै वाखा आफ्रुखे आनु मुइतुमान तांबलां मलो आनि पहर तंसाक याक थागिया ओइ तांलायो आं फाइक्या फुं उंखा साल कासाका सातुं तुंखा साल थां बायो आं थांग्रोरोग सारिक साल उंग्रोरोग तक्सा तमिलिरोग नगो किफिलरोग आं नगो हाबका पहर गोमाखा सानजा उंखा हर उंखा अमन आनि रायदा ताल मल बिसिरक आनु कितिंगैनो सलाइजागो तुं सुखा कलम सुखा माशिं मलनो काहाम हनलायो माशिं मलो कुतुं रुई चुबमा नरक पखाहाय दा नरक आनो हामजागैबो हामजाग याइबो सोंजार तंसाग आनि सामुंग्रे ख्लाइनो थांनाय नरकनि बागै हामारिबो तुबुमांनो तंनाय आव खाबुनो मारिकिसिं नरकनि बागै ककटां तांसा सैमानि दो आव हाके आ सिने स्टुडिय'नि जरा खगो फुंनि दाम सिसा ताइ सति बाचिथाम ओंखा ना आव हाके औ जराव सों सामुं तांसा खोनायना लायगोरना अर सामुं गांके सूर्य कुमार हाया खाबा सदागर देवबर्मा सबजाक सामुं तांसा फिया बनरनि कल तो फाइ दङ हंके नाय नेगर सोना को साबतं हेलो
1: हेलो
0: आओ लामसुगो
1: आं कक सना नायमा खामो सिखाइसा ताको आगर तलानि जे सेंटा आबो आगिना हाइतांग यासे परिस्कारिं जा
0: ओ स्रै स्रैं गया ना
1: जे स्रै स्रैं गया
0: नं रेडियो बायदा खाना मोबाइल बाय
1: रेडियो बाय मामां
0: ओ स्रै स्रैं गया ना
1: हे एकदम स्रै स्रैं गया
0: बो जागा दं थै सारि दं नं
1: आं अबिसरन दं थै सारि दं
0: अबिसरन न दं थै जा आबास लाइन मायङि दं हामिया
1: দে
0: সামানি অমরক ন আং আই কুসু বের মত লাঙ্গি গো খাইন তাই নং যে কামকে খাই হানি সামানি অমন ইঞ্জিনিয়ার আং সাউন তাম বস জাগ আব কেবেন ইটং হাই দো বেলাই হামাই বেলাই হামাই আও হাইকে খাবনে মারি কিসিং নরক খানাই দো সারসা পয়েন্ট ডগ মেঘাহার্য এফ এম উজ্জয়ন্ত

0: aw kapani marketing norok norni khana tok jakmani resamung ro khana nani bagainai norok bo kring hordi angbai tai resamung ni kok thai sadi bor samung no norok khana nani musung norok sahodi aw hake nai figure si ono jaro kok dugo sabotong hello
1: hello
0: aw lam sugo
1: jampui jalan bisrai sari tongo sar
0: jampui hatini bisrai na ni da da sadi sadi sadi bisrai
1: ta mun khanawana indi tokeni khanawana champion tokeni mungdo
0: champion
1: ni champion aro masala ingang ke sani devil bhai monisha karela ta rumba nai ro champion tokeni mung ke resamung kok thai ingang ke एक लड़की जैसे आखे ये काफी है सब जगह रसम का
0: वाह है से ना एक लड़की जिसके आखे ये कहती है ना वाह मकल वैसे कॉक साउ है से ब्ले बिन मकल से कॉक साउ
1: है नुंग ना तब अब इन्हें कॉक है वैसे है इनका के तो कॉक बुरो कॉक है वैसे अब है नुंग ना कोई
0: नहीं एक लड़के जिसकी आखि ये कहती है ना अमन कक्षा हमंटा सानी दयाल ते मनीषा कोइराला है दा उदित नारियन ते अलका याग्नि निखरन
1: हम
0: सिंगो
1: थाहना इसिनी तोकु अग्रज नाना पिछ नाना और नाना अनलती आई रंग वंदन इंगे आई अंजलि ए इनी तापु रिजे तापु रिजुत এই তাই ইনি কাগজলানি আইকনিকা আপু রবীন্দ্র আপু শ্লান্ত তাই ইনি তাই সয়াতি যত নিবাগই হাইছে
0: বেলাই হামবাই বিশরাই
1: বাই হামবাই
0: দা দা খানা দিয়া কো নিন খানা দক জামনি রসামং দু আও চ্যাম্পিয়ন ফিল্ম নির সামং और सामूहन खनन बागे कबखर का विश्वराय उदित नारायण नि खरंगो आओ खनाई नगर दिया को है के नि खनतक जगमनी और सामूहन

आओ खापने मार्की सिंह नरखनाई तो सारसा पॉइंट डॉग मेगा हार्जो एफएम उज्जैन तो नरकनी हमजकमा चीनी खातुमा पांडा आओ खापने मार्की सिंह नरक बरसा मुंग तुम नरखना मुजुम खांगे नरक आंगमई करंग हरदी जीरो

0: खबरनि मारखि सिं नारेन सकि जमतियानि खरांगर सामुं खोनाबायखेना आव अजराव हायन हाय ककदगर साबतं हेलो
1: हेलो
0: लामसगो
1: दिपर काम दारा आं पयखन लखनतिबरा थायदों दो
0: आव दिपर काम
1: आं पयखन लखनतिबरा थायदों
0: आव सादि सादि लखन सादि

नरग्रोसामुङ नि बेलाय हामबाय आखो बेलाय हामबाय नरग्रोसामुङ सिलेक्ट खालामारोखो खि आं खाना थगजागौ हायांखो आनि खाना थगजां मानदों आं खानावा आमुं खानामुं खानामुं आगाय थांगौ हायखो नरग सिलेक्ट खालामनाय न खाना गाहांगा खाना थगला मा खानो आव हायखो जराव बिपासा ताय समीरनि खरांगो ग्रोसामुङ इंग्रासिथों जराव खातां यादे

0: आओ खबुनि मार्गिसिं बिपासा ताय समीरनि खरंगर सामुं सोंखना लाखिया नायनेनो ताबु ककदुगो हायनो हाय साबतुंपि हेलो
1: हेलो दिपर काहाम
0: बेलाय दिपर काहाम
1: आं सिरिया तिवानि सालो मुरासिं
0: हेलो मुरासिं देन थाना बा
1: दारा भाई तं
0: हां काहामनो ब्ले सालो
1: बरसामुं
0: खोनानो मुसुं सादि हिन्दी खोनानो मुसुं ना दह सादि
1: आओ प्यार करेगा
0: और प्यार करेगा
1: आओ
0: आओ आओ दा
1: ए ए
0: बा हाजी है ना
1: सांड से ए रतन को कह सांड से पर गति ने बताता रतन को पर
0: है ना
1: ए है ना दारा
0: सांड से ना
1: सांड एक नायक के पब्लिक आई ने कहा के सांड
0: आओ प्यार करे ना सब और नायक सब सेवाले खंडा सेवाले खंडाई शिल्पा सेती ना दवा कहते सालो नंग खाना तो जामनी रसम मुंग खाना दी
1: चलो ऐसे में कर बदल आंगूठी नक्शा पकड़ कर जमीन पर
0: दा कॉकरी खनाइना गई आ कहके दो दा कहके बेल हम भाई आओ सनसे पर्दा कीजिए कुमार सानी खरांगो और सामू न खनान बागी कब खरका सालो मोरा सिंह तई बो बीन की सिंह सुनो बहनो दीदी।

आओ खापंगने मारे किसी हाई नो हाई नरक नो लामसोक पीरो सरसा पॉइंट डॉग मेगा हर्जो एफएम उज्जैन तो आओ नरक ने हमजाक मा चीनी खातुंग मा पांडव संग रसम रो खना लाके आओ चीनी पांडा बेरमो तो मनी हाई के नो संग कैसा पांडा नी ते कैसा पांडा ओ संग हबलायो है दीवाना आओ है के खापंगने मारे किसी जों ताबुक तेकाइसा पान्दाव थांगि दंलायो अमंखा आव सरंगदि ताय सिदि हेदिबा सरंगदि ताय सिदि आव खाफन मारकिसिं सरंगदि ताय सिदि अमंखा अवेयरनेस हायखबा मोटिवेशनल प्रोग्राम खाफन मारकिसिं सें सरंगलायनाबो नांगौ रामबो सों खोनालायनाय हायादिबा तायसों सोबो सोरोंलायनाय आव हायखे बिसि ब्रुम ब्रुम न' खाबनो मारे किसिं बिसि ब्रुम ब्रुम न' साइल्ड लेबार डे आबो इन्टारनेशनल हायखाबा हायुंग' हायुंग' साइल्ड लेबार डे होनायनाय 12 जुन हायखाबा मियाति हाय सालो ओंखायनो साइल्ड लेबार डे होनायनाय बिसि ब्रुम ब्रुम न' पालिलायो ताय चिनि भारत हाक्टर बहायन' साइल्ड लेबार डे होनायनाय आबो बेलाय बरमनि बिसिंथै सामुरक खालायजागै दङ पालिलायो फियाबा खाफंनि मारगिसिं अर' साइल्ड लेबार मानि तामु आबरमतै नै जों गिसा सिलायानो ताय तामुनि बागै अ साइल्ड लेबार न तामुनि बागै कासुनानि नां साइल्ड लेबारो साबो खबजाक तामनि बागै साइल्ड लेबारनो मोथाकनानि नां केरं तामुतं केरं तामुसा आबर मुतै नायसों सिलायनानि नांगौ हायादिबा आव साइल्ड मानि गांखेथ' जराय लेबार मानखेथ' सामुं तांग्रोमानि हायादिबा सिसु श्रमिक नि होनलायो बांलाबाय गांखे गांखे ताब्रमनि जों गांखेबा चराय आयकबा सामुं तांनाय चराय हायकबा चराय रग्न सामुं तांग्रमानि हे दिबा अमुनो नहुनो चाइल्ड लेबर आव हाके आव खाबुंनि मारकिसिं

आओ खापने मार्केटिंग आशुक जोरा सं सरंदी ताईसीडी सं खना लाख्या आओ हके सं ताबुक ताईकेशा पांडा बतांगो सं हाबुइतोंग लायो ताबुक नी सिनिता केशा पांडा बतांग गांके खना ततो खरांगो सं थांगितोंग लायो खापने मार्केटिंग आओ खना ततो खरांगो सं रसामुंग खना लायनाय नरनां खना रवान वातिरग ब केसिमिसा फाताराव वाय दङ हे दिबा आओ हाके सं रसामुंग खना लायना अजराव

आओ प्रतिभा ते मानिकनी खरंगोर समुंग सिंह खनालाख्या तबो नर नर समुंग ताईतांगसा खनारनानी थांगी टंगो और समुंग खा सिनी रसाब करंग बिमोल बायर साबजा कृसा मुंग बिमोल दा बिमोल तिनियो सिंगमी बाक्सा करिख्या हाइफानो बिनिर समुंग न खनावैनाय सिंग बनो किच्चा मुइतो क्लाई नालाय बन खापंग मारे किसिं आव हिमते हिमते चालै थांगसि वन और समूह नरक जतनी बागई

0: मैं बादशाह के बारे में आपसे कुछ।
1: अरे रानी, क्या आदमी दिया तुमने मुझे। इसका नाम तो मोती नहीं, सचमुच बादशाह ही होना चाहिए था। इसने कहा

0: फुटबल हायुं कापनि ग्रुप बेरेमो ग्रुप सीओ हरनि दामथाम तामुइ सति थामसिगो ब्राजिल थोंलायानो मरक्कोनो केबेंगै ताबु ककतुमा सक्रबुइ राष्ट्रभक्त द्रौपदी मुर्मू साका इंडियन मिलिटारी एकाडेमी उंखा बरम खाक राग ताई हाक अतर्न हामजागै सामुं तांमानि मारि तिनि उत्तराखण्डनि देहरादुन इंडियन मिलिटारी एकाडेमीनि फिल्ड सारा बाचिचार पासिं आउट पेरेडनि बिसिंतै भारतनि सेंक्राक बदलनि खरक ब्रुइरा चारतिसा कोताल सिख्ला अफिसार न लामसगमा मेल ब म कक साका ब साका भारतनि सेंक्राक बदल ब्रुइ केडेट रक पासंगमा एकाडेमीनि लाइबुमा ब खुर्सा थतक कायसा थं अब हाकतर ब्रुइ रगनि तुइफां बाय हामक्रायनि बुखाक बुसकांगुइ तंगमानि खातुंजाक कायसा याप्रि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी साका एनडीए हाफां थानाय बिसिचिनै रमै सिख्ला रगनि तुइफां बाय हामक्रायनि बागै थागियावै सामुं तांगुइ दङ तै आज जरनि बिसिं हा कतननि सिख्ला रगनि साक पुइतु जामा बांखा अब बरगनि सानमुं सुपुंथानि जुबाखा तिनि हदानि आवाय लाम ब म कक खुर्चाखा मन्त्री बख्रक तै बसाखा भारतनि सिख्ला हदा सयसिमा तै तांसेबनि सिमि चेंगै सनामुं नखायुं सेमि कन्डाक्टर तै द्रोन हाय जुदा जुदा दिखल जानि जा तांग मारि फुनुखा हायुं बेर म कबांमा बाताय मुंग हा कतननि सिख्ला थोंकोरों रग मार मार बसंनि बरम बांग्रेखा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि तुइफां बाय हा कतननि ताबुंनि एनडीए जुट हाफांनि बुसकांगुइ तंमा सामुं नुइ साय ब्रिटिशनि व विकसित भारत सनामनानि वांसक तांतुयै हिमुइ तङ थानाय बिसिचिनुय एनडीए हाफांनि हामक्राय सामुंग आलायदा फान बक्सिन जाखा हदानि पाइथाक तै सेबसाब मानथानि सेबलाजाक बरक रग्न आबोनो रोगै कखथुम गायसारनाय बायदि
1: बिसिचिनियो जल जीवन मिशन सेबाय हाकतरनि रोजाक रोजाक लुकुरक ताबुक नग आचुगिन काहामतुइनि सेब मानै तंगो कामियाम जायो काहामतुइनि सेब सगैमा बाय सा काहामतंमा थिति ओंखा हाकतरनि लुकुरकनि लांमास लाइजाखा दै बाबायसाबो खाखो पिएम सनिधि योजनानि सेबाय लामा रुकुंग चिकन बानिया थोंनाय रगनि बागैबो रांथंतुइ चुगजाक नाव कोताल लामफियाव जाखा लाइटे साके लागायना हारै गोबांमा चिकन बानिया थोंनाय रग बरकनि बानिया फरनानि सेब मानखा जत बाय जाखे जतनि हामक्राय ख्लायना नाहार मुंनतुयै एनडीए हापां बिसि चिनैनि अलामहि मुंग हामक्रायनि सेब सगै रेखा हदानि बेबाग बेरेमनि लुगुरकनि थानि ककतुमा खतलनि सिमि आं बिपूर्णा आकाशवाणी आगरतला
0: केन्द्रनि हापां लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल धीराज शेटन हा कतननि उलनि सेंक्राक बख्रखिनै चितखा कासुमुं कक चलायन ककमुं कायसाव साका लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल धीराज शेट बिसिक ब्रिजि सुक रमुइ सेंक्राक सामुं तांथानि अपारेशनल एलएमटुइ साकफान बांग्रोमा तै तां नगनि दिखल गोबांमा तंरोंखा तै भारतनि सेंक्राक बदलनि चबा खालायमा फान तै जरा कलक रमुइ कोतालकुक खालायथानि खुर्जा ततक सामुं तांखा अर्जुन तालनि बुसकां साल थामसि व ब सेंक्राक बख्रखिनै बजा यासागान आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अ ककतुमा खोनाय तंबायु आकाशवाणी ककतुमानि आपडेट मान्नान बागै लग इन खालायदि www.newsonair.com निउज अन एआईआर एप तै टुइटार बाय फेसबुक प्लेटफर्म एआईआर निउज एलार्टस युट्युब नायदि निउज अन एआईआर अफिसियेल आबनो कारिबो आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि ककतुमानि आपडेट मान्नान खे टुइटार एबा एक्स हेन्डेल आकाशवाणी निउज आगरतला फेसबुक एआईआर निउज आगरतला तै युट्युब आकाशवाणी निउज आगरतला नायना नांगाना मन्त्रीक्र प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा साका मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि तुइफां बाय एनडीए हाफां थानाय बिसिचिनै रमै हा कतननि लुकुरगनि बिसिं साक पुइतु जामा बांग्रेखा तिनि आगरतलाव प्रदेश बिजेपि तांनग जुगालेजा ककतुमा थुमनारगनि थुम ब म कक साका ब साका नाइकल मुं काहाम जतनि मानजाग मुं हामक्राय तै बसं न बुसकांगै लांथानि मन्त्री बख्रकनि सुमाय तांमा गोबांमा बरग्न खादोंरेखा तै हायुं बेरम तुइफां ओंनानि नाहारै भारतनि बुसकांगुइ तंमान राग रेखा बसाका मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि फुनुकजाग लामतुइ सालसि सालका आमचाय लाइबुमा ब खुर्सा ततक काहाम सोलायमुं

0: पाले।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और

0: राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: शिक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत

0: तथा आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।